तेरे इश्क में चलकर ये मंजर है, चाहत की फजाओं में मदहोश है, तेरी प्यारी मेरी राहत थी, तेरे इश्क में बहकर ये दिलबर है, तेरे इश्क में चलकर